0: දැනෙන තැන ඔහොමම නවතින්න. All time beats with
1: Jami.
2: जब से तुझे देखा दिल को कोई आराम नहीं.
0: सतीय दिनवन एक दंग हतर वनक. All time beats with Jami.